0: श्री श्री देव पुरी सा महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय।
1: विष्णु गुरु महामंत्र।

जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyun aata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare. जरा बस मैं कहूँ कि हर सोनी भाई बैठ रहे हैं, हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने करते उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत्संग। Sat is the good things, very things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sitting like this, say, do aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे, और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न who should be here first and then second and like this. Then we have all, so this is sat. Sat kya hai? Wo sat kahan hai? Wo sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai, janwaron ka bhi hai. Wo bhi aata hai तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है, छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माय लाइक दिस इवन दैट। Then it is said, yes, this is very good. So child is going front and mother is behind. Taki the children can be with mother very nice and that. And not going out, then what happens is something. So sat, wo satya hota hai. Satya hi sat hai. Satya hi satya hai. Wo hi satya kahal jaya hai. तो सत्संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को किसी बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो टू सिट लाइक दैट। सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग, सो वेरी नाइस सत्संग। तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ।
एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाँ तो लगाओ तो बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और माँ प्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए वहाँ, नहीं तो वो बैठे तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज बट दे आर सिटी सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा, तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वाटर एंड इन वाटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी है जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हू आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big, big, big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many, many, many, many languages here, Bharat mein. Lekin, unhone sab karke Hindu. Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu, bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka, kisko kehte hai, batao? Haan. Hai? नहीं संस्कृत में तो है हाँ सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसके ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस So, therefore, we know that everything that in my country, and where my country that, when I go to the airport, and then it's everywhere. Yeah. So, I'm coming always with aeroplanes. Yes. And I see there, from that, I see it's our India, Hamara idhar se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not
but we want to come to here. The Swamiji have Maheshwaranand. So I said, what do I do to Maheshwaranand? I didn't do anything now. But he's doing it for me. हाँ पहले मैंने कराया but he said I told them but he didn't know I have done and what do you what will do and so my disciples that everybody in the whole countries whole world countries की अब they are come and made so इनका government इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है हुआ है वैसे ही करना चाहिए और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इनको हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो आप उसको बोला आपका लेकिन बोलो कैसा क्या करो ये बात है नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को

करने करेंगे वो, और मैं रहूँगे तब तो फिर पड़े रहोगे ही, वो तो आगे भी पीछे में. बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स, दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर, दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के, और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है, दैट इज द फर्स्ट. एंड सो माधवानंद जी, ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट, इट वॉज ओनली लाइक दिस, एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है, ही केम टू माई विलेज, टू माई मदर, एंड हियर माई वॉज स्टेइंग इन माई हाउस, एंड देर वॉज वन वेरी नाइस पर्सन इन रूपावास में, और वो थोड़ा मतलब ठीक नहीं था, तो धीरे धीरे चलते थे, बट ही वॉज नो वेरी ग्रेट स्टैंडिंग, वेरी ग्रेट. वो महाप्रभु जी के पास आए थे तो वहाँ बिठा दिया कि बैठो और पढ़ाओ. तो बाप जी के वो नहीं थे इतना, छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी, एंड वो आते थे देन घर पे आते थे, फिर वो आते वो बैठते थे. तो माधवानंद जी, अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है. रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चपड़ गया हो गया यूँ से भी जगह है. हाँ, लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा. और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज, वेरी मैनी कंट्रीज, तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस, माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड. 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास. तो वो ठेठ तक जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है. अब वो छोटे मोटे लोग हैं, उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें. तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है. अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ. बस अब हम मनुष्य है. तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है. जाति हमारी एक भारत की है, और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना. हाँ ठीक है, आप मेघवाड़ हो, गरग से हो, जो भी है, सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का. तब देख लेना, उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा. हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने. हाँ प्रेमानंद जी कहाँ है, ये प्रेमानंद जी. अच्छा, प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो. हाँ तो वो इनका है, प्रेमानंद जी का. प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है, और देश में गांव बहुत बढ़िया है, और पहाड़ों के ऊपर में भी, नीचे सभी जगह है, और इनका मगा या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है. ओके, लेकिन आप देखेंगे, इनको देखेंगे कितना रर रर इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी

0: उपरक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं, तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए। और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो श्रीदीप नारायण भगवान की
1: जय। श्री मारवानंद जी सदगुरु।

0: जय श्री माधवानंद जी की जय गुरुदेवा की जय
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय
1: मात पिता गुरुदेवा
0: की जय
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय
1: ओम शांति शांति शांति हरिओम
0: जय की जय।

प्रभु चरा मर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुषा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्लेस्ड सेल्फ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, here in this hall, in our beautiful ashram, and all dear ones round the world, welcome. For someone of you,

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

हरि ओम फ्रॉम ओम विश्वदीप गुरुकुल स्वामी महेश्वरानंद आश्रम जडन डिस्ट्रिक्ट पाली इंडिया राजस्थान. नाउ डेज वी हैव अ रिट्रीट विद परमहंस स्वामी महेश्वरानंद योगा सेमिनार योगा क्लासेस. वी आर कंटिन्यूइंग आवर मॉर्निंग लेसन एंड नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म आसनास फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेवल ऑफ योगा इन डेली लाइफ. सो वी विल स्टार्ट again with Ananda Asana. First of all, we will sing Om all together before performing this kind of asana. So just close your eyes, straighten your back, put your hands on your knees, deep inhalation, and just sing three times Om.

जय देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

0: परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सर्वभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: आप ट्रांसलेट करो।
2: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he gave, he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushita, Shraddhya Mahamaleshya Swami Maheshwarananji Maharaj, Jinki Pavan Kripa Se, इस आश्रम में ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
2: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwarji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Maheshwarananji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी की ये साधना ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
2: एंड ही थिंक्स दैट दिस तपस्या दिस काइंड ऑफ साधना विल ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल इन द फ्यूचर।
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
2: इन इंडियन ट्रेडिशन देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु।
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
2: शंकराचार्य जी सेज इन हिज भाष्य इन हिज कमेंटरीज,
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है।
2: इफ समबडी इज ग्रेटर देन गॉड देन दिस इज गुरु।
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है,
2: नोबडी सो गॉड,
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं
2: एंड गुरु इज इन फ्रंट ऑफ अस।
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं।
2: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म।
2: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति।
2: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग।
2: And third is the satsang with the great saints.
0: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता।
2: We believe that human life is not available all the time.
0: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं, एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है।
2: There are two things important in human form. One is the intellect which no other living beings have.
0: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है।
2: एंड वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर थिंग्स व्हाटएवर कर्म्स वी वांट टू डू। सो इंटेलेक्ट एंड कर्म्स आर समथिंग स्पेशली मेड फॉर ह्यूमंस।
0: हमें सबको समय बहुत कम मिला है, इसी समय का हमें सदुपयोग करना है।
2: वी गॉट अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टू डू गुड इन दिस टाइम।
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है, इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृतः भवन्ति। जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
2: इन वेदस इट सेज that if you are born as a human and you have to reach to this enlightenment, otherwise there will be a lots of suffering.
0: उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं, जैसे परम श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद जी ने लाखों हजारों लोगों को इस मार्ग पर लगाया और मार्ग दिखाया.
2: So to show this path, we have great saints, and one of that is our Gurudev Vishwaguruji, who taught hundreds of thousands of us on the path how to realize oneself.
0: इसलिए हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व बताया गया है. वेद में कहा है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य ही कथते अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः. जैसी हम लोग श्रद्धा गॉड पर, ईश्वर परमात्मा पर है, वैसी ही श्रद्धा हमें गुरु पर भी होनी चाहिए.
2: So in Vedas it is said that as much as we believe in God, the same amount of belief we should have to our Guru.
0: इस आश्रम की परंपरा बहुत प्राचीन और बड़ी पवित्र परंपरा है. परम श्रद्धेय स्वामी अलकपुरी जी महाराज, स्वामी देवपुरी जी महाराज, दीप नारायण प्रभु जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज और श्रद्धेय विश्व गुरु जी महाराज.
2: So our parampara, our lineage is very holy and very old. It starts from Alakpuriji, continuing to Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji, and now Vishwaguruji.
0: इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं, आप सबको ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है, ऐसे गुरु की शरण में आप आए हैं.
2: You are very lucky to get such a guru and be protected in his shelter.
0: इसलिए इस गुरु के माध्यम से ही आप उस परम सत्य तक पहुंच जाएंगे और आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा.
2: एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन, द फाइनल लिबरेशन, एंड यू विल बी फ्री.
0: हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत.
2: शॉर्ट एंड स्वीट. दीप नारायण भगवान की जय. स्वामी आत्मानंद जी महाराज की जय.
0: स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज की जय.
2: This was, I think, it was like an introduction to the lecture, because I know that he speaks minimum for 3 hours. So this was very short and sweet. In India, there is a saying, Gagar Me Sagar. It means that in a small pot, you fill the whole ocean. So the essence of the human life, why we are here in Om Ashram, he just explained. So I will just continue a little bit, 1-2 shlokas from Ishavasya Upanishad. As you remember, Ishavasya Upanishad is first Upanishad from it can be found in Yajurveda. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ishavasyamidam Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagatena Tyaktena Bhunjita Magridah Kasya Svidhanam Kurvaneve karmani jiji vishechatam samaha evam tvai nanyate tosti na karma lipyate nare asurya namate loka andhena tamasavritaha tanste pretyabhi gachanti ye ke chatmahano janaha ane jade kammanaso javiyo naina deva apnuvan purva marshat tadhavato anyanatyeti tishta tasminapo matarishva dadati Tade jati tane jati tadure tadvantike tadantarasya sarvasya tadu sarvasya se bahyataha yastu sarvani bhutani atmanyavanu pasyati sarva bhuteshu chatmanam tato na vijugupsate yasmin sarvani bhutani atmaiva bhudvijadaha vijatanataha tatrako moha kaha shokaikatvamanu pasyataha. So we reach till the 5th shloka, and I will just tell the short of the 6th and 7th shloka. Yastu sarvani bhutani atmanyevanu pasyati. So Ishavasya Upanishad, first 3 shlokas, first

श्रीमद्भागवताख्य धाम बसति राशेश्वर प्रेयसी पंचाध्याय लसत तनुर्विजयते।

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तके हैं।
1: In the first class of our in Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरति, पकड़।
1: So this is like when Vishwa Guruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: Guruji ne jo aapko mantra diya hai, upadesh diya hai, aur apna lakshya bataya hai.
1: So whatever the Vishwa Guruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain,
1: this is called

0: हमदर्दी,
1: क्षमा,
0: एंड्यूरेंस,
1: पेशेंस। कोई छोटा आदमी अगर कोई गलती कर जाता है तो बड़े आदमी को उसको क्षमा करना चाहिए। जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है, आई एम वेरी सॉरी।
0: So first one was patience, the second one is to forgive. So whatever, whoever does something, you either forgive to them or you forgive to others.
1: Primary ki shiksha mein jo wife husband hai, pati patni hai, unko saath baith kar ke dharma aur bhagwan ka chintan karna chahiye.
0: So in the first class, to the husband and wife, they should think about God.
1: Dhritikshamadamashtayam. Primary mein hai kisi bhi vastu ki, paise ki, ann ki, dhan ki, chori nahi karna. Nahi karta hai, to wo usme paas ho raha.
0: The third step is do not steal. Whatever money, things or something you have, they should not steal.
1: Pavitrata.
0: Purity.
1: Pavitrata bahut zaruri hai. Main plane mein safar karta hu to keval wahan ear leta hu. Baki kuch nahi, kyunki wo late hain. Excuse me, veg, non-veg, veg, non-veg.
0: So purity, like in an aeroplane, I take only water because the people are offering veg, non-veg and all these impure things.
1: Oh, pavitr nahi hota, so many shuddh nahi hota.
0: They are not pure, they are not clean.
1: To dhriti kshama damayasteyam shocham mindriya nigraha. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें, ऐसा खान पान, आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए।
0: So we should eat, drink, think, listen, or whatever we do should be in a such a way that our life grows, that we are going upwards in the upper trajectory.
1: हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, आपका आहार शुद्ध होगा।
0: In बृहदारण्यक
1: एक मिनट आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्व श्रुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे।
0: इन बृहदारण्यक उपनिषद इट सेज इफ योर डीड्स एंड फूड इज क्लीन यू विल अंडरस्टैंड व्हाटएवर विश्व गुरु जी इज ट्राइंग टू टीच यू।
1: धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम ग्रस्त लक्षणम। धीर विद्या बुद्धि माइंड, इसको बुद्धि को सदुपयोग में लाना चाहिए, धी मनी बुद्धि। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी मनी बुद्धि है, माइंड ये जो है, ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है।
0: So our intellect and mind should be for good. It should be pure, and this happens from the food.
1: विद्या,
0: knowledge,
1: knowledge, जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या, विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं, सा विद्या या विमुक्त ही, जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे उसका नाम है विद्या.
0: Vidya or knowledge is that what frees you, not what binds you, what doesn't cover you or what makes you bound, what makes you free.
1: आप उलझे नहीं हैं इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं है.
0: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
1: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
0: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
1: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
0: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
1: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
0: सो फॉर एनी साधका, एनी भक्ता, एनी डिसाइपल, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, ऑल दीज प्राइमरी थिंग्स आर नेसेसरी एज अ बेस.
1: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
0: सो देर इज ओनली वन रोड विद डिफरेंट नेम्स. Somebody is calling yoga, somebody is calling ज्ञान, somebody is calling this or that. There are no different roads.
1: बम्बई सूरत रोड प्राइमरी, सूरत बड़ौदा मिडिल, बड़ौदा रतलाम Hi. Ratlam.
2: He's telling the map of India.
1: India. Same like the एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत, बम्बई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
0: So like when you start from Bombay going to Surat, this is called Bombay Surat Road. When you cross Surat, it's called Surat Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
1: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
0: The middle school is yog.
1: Yog mein आपके लिए आठ पुस्तक हैं जिनको आपको ध्यान दे करके पढ़ के पास होना है.
0: So in the yoga there are eight books in which you have to study and then pass.
1: यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान, अपने को नियमित करना. उस पुस्तक का नाम है नियम.
0: The book which tells us how to control ourselves is called नियम.
1: नियम, यम अपने को रोकना.
0: यम इज द बुक विच टेल अस हाउ टू स्टॉप आवरसेल्व्स.
1: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो नियम हो गया.
0: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स, व्हेन योर
1: नियम मींस कानून को पास पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
0: To follow the laws and rules to put it in your life, this is called नियम.
1: यम नियम के बाद में आसन है.
0: After that is यम.
1: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम.
0: So
1: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
0: So the third book, Asan, tells us how to keep our body clean and how to make it strong and so on. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
1: आसन से आपकी बॉडी शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर पांच ईयर है, वो पांच ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए, सामान की, मेटेरियल की, सामान की.
0: सो लाइक द आसनस प्यूरिफाई द बॉडी, मेक इट क्लीन, द सेम वे द pranayam does for all these five pranas, five types of air, which then service our body properly.
1: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है short and sweet. समझ गए? प्रत्याहार मानी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
0: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
1: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
0: सो nowadays इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनस एंड प्राणायामस, व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी, बट यामा एंड यामा द रूल्स ऑफ आउटर एंड इनर बिहेवियर दैट नोबडी टेल्स.
1: आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
0: So after the asana and pranayam pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
1: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
0: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
1: ये मेरा चमनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
0: So
1: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
0: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand, so this is not good for yoga.
2: Guruji, ye baitha na
3: Baba Ramdev ji
1: kahan aa jaa wo hamara chela hai wo unko pata hai sabko to usme ye hai ab iske baad mein hota hai dharana dharana jo swayam ka judgment hai swayam ki swikriti hai स्वयं का निर्णय है स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है उसको धारणा बोलते हैं.
0: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
1: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला है। धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला। ओ भाई
0: सो यू लुक
1: संन्यास लेगा
0: धारणा
1: नहीं लेगा नो धारणा
0: Dharana means actually also concentration. So you look at my the Dolak person if he wants to have sannyasa. So he said no, thank you.
1: हमको एक व्यक्ति ने कहा आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
0: Somebody told me you are a great person. You cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this sansara. You are a great person.
1: Humne apni chadar uske gale mein dali, tum bhi apni parampara ko peedhi ko paar karo, tum bhi sannyas le lo. Usne kaha nahi nahi nahi nahi nahi, no no no no no.
0: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, thank you so much.
1: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
0: So desires in this life, they are not fulfilled for this person and his concentration towards God, dedication is not there.
1: Dhyan, iske baad mein dhyan aata hai. Dhyan mein jo hai, dhyan se pehle gyan chahiye.
0: Before meditation, you need some knowledge.
1: Ek jo hai, wo dhyan business ban gaya.
0: And this knowledge became now business.
1: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी-बड़ी बातें की, तो वो एक business है. लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
0: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
1: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है money. तो money 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूंगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
0: So if I tell you please take the money from me and then I give you 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, which one you will take?
1: अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
0: From all of
1: 500 these, का ना 500 का.
0: From all of this you will take 500. 500
1: का ठीक है ना?
2: 2000
1: का बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे. 200 का नहीं. कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी? So नहीं लेगा क्या?
0: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
1: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो.
0: Now we are like
1: again hand. Yes.
0: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
1: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती
0: है. So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
1: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्तोपि दुःखेन गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
0: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
1: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप दो घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा

0: अभी तो थोड़ी देर में वहां से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व तो आपकी लाइफ में ज्यादा है।
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के
1: want them.
0: जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता
1: There is a
0: है, क्योंकि
1: family.
0: गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है।
1: The for any human, the life, the family, and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि। हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था,
2: दिल्ली में।
0: दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है। समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कांटेक्ट है, अट्रैक्शन कांटेक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है। केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते।
1: Samadhi is when you feel only yourself, there is no connection with your body, there is no connection with this world, you have connection only with yourself.
0: हमारे विश्वगुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प।
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहाँ पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है, और जहाँ कि उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि।
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants. So it's with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहाँ पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
1: So in Nirvikalpa, there is neither disciple, there is no guru. They both merge into the God, Aham Brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई। अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे।
1: So this is 12th
0: अब
1: class, so this
0: 12वीं
1: is middle.
0: क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं।
1: So 12th class is bhakti.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं, 9।
1: In the course of bhakti, there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें। बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना, नहीं हमने सुनना चाहते। श्रवण भक्ति,
1: So first is listening. So listen only what Vishwa Guruji says, nothing else.
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो, ये कीर्तन है।
1: Kirtan or remembering is that you remember only the verse of Vishwa Guruji, nothing else.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं, ये स्मरण भक्ति है।
1: Remembering the Smaran Bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: सरेंडर,
1: Surrender.
0: चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है।
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की, दूसरे की किसी की पूजा नहीं

0: करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है।
1: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते
1: हैं। When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next
0: दास्य, सेवक, शिष्य, उसको दास्य भक्ति कहा गया है।
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: दास, अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं।
1: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई और ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु।
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं।
1: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप, इज व्हेन यू You believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
0: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नजदीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया, सखा मित्र, फ्रेंड।
1: When Arjun was with Krishna, he didn't. After some time, he stopped being his servant. He stopped being his sevak. He became his friend.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है। बोलो, महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबहरे चला चलूँगा। चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया। कहते आत्मनिवेदन।
1: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट।
0: वो आत्मनिवेदन है। आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं।
1: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग।
0: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए, वो क्या है, ज्ञान की भूमिका।
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं। उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई।
1: Seven books.
0: उसमें पहली books क्या है? सुभिच्छा। क्या है भैया? सुभिच्छा क्या है? बोलो गुरुजी। अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम कहाँ मना।
1: फर्स्ट बुक इज स्वइच्छा और द ओन डिजायर एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू।
0: अच्छा अब आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं। अच्छा अब बोलो,

0: गुरु जी,
1: गुरु जी,
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास।
1: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है, उसको कहते हैं विचारणा। उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारणा।
0: उसको विचारणा बोलते हैं।
1: विचारणा means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
0: तन मानसा, इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा। गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है। इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन।
1: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा, व्हेन द गुरु, द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल पॉट ऑफ शिष्य ऑफ डिसिपल।
0: सत्वापत्ति, अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात्, प्रथमा समुदायता विचारणा, द्वितीय स्यात्, तृतीय तनुमानुसा, सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात्, पंचम संस्यात्मका पदार्थ भावनी षष्ठी, सप्तमी त्रियगास्मृतम। तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते।
1: सत्वापत्ति इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इन गुरु एंड डिसिपल देयर इज नो डिफरेंस इन देयर थिंकिंग एंड एवरीथिंग।
0: पदार्था भावनी कहते हैं, पदार्था भावनी, जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन।
1: सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू इवन डोंट रिमेम्बर, यू नो, नाइदर एनी स्वीट्स और एनीथिंग, एनी फूड यू लाइक, देयर इज नथिंग देयर।
0: पदार्थाभावनी का अर्थ ये है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थाभावनी बोलते।
1: पदार्थ अभाव, द डिटैचमेंट फ्रॉम द एनी थिंग्स, इज लाइक यू कैन हैव अ स्टोन और यू कैन हैव अ गोल्ड, फॉर यू दिस इज इक्वल।
0: नहीं, पहले असंशक्ति। असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति।
1: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
0: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा।
1: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
0: पदार्था भावनी, जहाँ सोना मिट्टी बराबर लगे, कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्राप्ति, संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो, उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा।
1: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
0: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साप दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं। आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर वो क्या ना बोलते उसको,
1: सांप, सांप, स्नेक,
0: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे?
1: So like in the in Bhagavad there is this curse of king.
0: इसको पदार्था भाव नहीं बोलते

0: ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थिति होने का, स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी। उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: So this is that book Padarthabhav. There is no fear of snakes, there is no fear of death, there is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
0: तुरिया अवस्था उसको कहते हैं जब आपके चारों तरफ सामग्री पड़ी हो, वस्तु पड़ी हो, सब कुछ जितना भी संसार में वो पड़ा हुआ हो और आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं।
1: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस or the mind state when you have anything around you and then you don't want to do any work in that, it doesn't attract
0: at all. इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरुजी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया।
1: सो इन आवर लाइव्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू पास ऑल दिस टेस्ट एंड वी हैव टू कन्विंस द गुरु एंड गॉड that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we passed, and we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवदी देव देवेश्वर महादेव की जय। इंद्रदान सम्राट महाराज नंजी भगवान की जय। राजगुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शोकनंद भारती जी महाराज की जय।